मेरी परेशानी दूर हो गई। कहते जी मुझे बताए तो सही क्या मामला है। कहते जो मामला था मेरे रब ने टाल दिया, मेरा मामला हल हो गया। कहते मुझे बताए तो सही, मुझे सिखाएं मैं अपने रब से कैसे मांगूं। अब ये शेख साहब हैं, कहते मैं उस आम इंसान बुजुर्ग से दुआ का तरीका सीखना चाहता था, मुझे सिखाए, मुझे बताए कि मैं कैसे मांगू। कहते असल मसला यह है कि मैंने 2000 किसी का उधार देना है और आज उसकी आखिरी डेट है, अगर आज उसे नहीं दिया तो मेरे खैर नहीं है। तो मैंने कहा ऐसा करता हूं, मक्का में रहता हूं, हरम में जाऊंगा तो किसी से मांगूंगा तो मेरा मसला हल हो जाएगा। जब अल्लाह के घर में मुझे शर्म आ गई कि अल्लाह के घर में हो तो किसी और से मांगू, भीख मांगू अल्लाह के घर में, लेकिन भीख लोगों से मांगू। कहते नहीं, मैं बैठ गया। वो मैं कह अल्लाह ताला तू मेरा रब है, तू अजीम है, मुझे 2000 चाहिए बस, ए अल्लाह मुझे 2000 दे दे। मैं रोता अल्लाह से मांगता रहा। तो जैसा कहते उस शख्स ने कितने दिए आपको? कहते उसने 5000 दिए। कोई शख्स आया जेब में पैसे निकाले, 5000 उसके दे के चले गए। कहां से वो शख्स आया, किसने उसे कहा 5000 देने हैं, कितनी देने हैं? कहते मेरा मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द था, मेरा मामला हल हो गया है। अल्लाह ताला के घर में आके किसी और से भीख मांगू? नहीं, मैं तो उसी से मांगता हूं। और उसे 5000 मिला। मांगे दो थे, देने वाले ने 5 दिए। मेरे भी अल्लाह ताला से मांग के तो देखो, वो अजीम है। और आज देखे रमजान का महीना है, बेहतरीन दिन है, बेहतरीन रातें हैं। हम अल्लाह ताला से नहीं मांगते, कब मांगेंगे अल्लाह ताला से? क्या हम मोहताज नहीं, हम कमजोर नहीं, हम ज़ईफ नहीं है? अगर तुम्हारे पास सब कुछ भी है तुम फिर भी ज़ईफ और मोहताज हो। हर आन में हम मोहताज हैं, हर आन में अपने रब के हम मोहताज हैं। बाज़ू कहते हैं बड़े गुनहगार हैं, तो गुनहगार क्या करे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यबन आदम लो अतैतनी बिकुराब अर्द खताया, ए आदम की औलाद अगर तू जमीन के रेत के जर्रों के बराबर भी गुनाह लेके आओ मेरे सामने, थुम लकीतनी ला तुशरिक बी शैअ, फिर इस हालत में मेरे सामने आए कि मेरे साथ किसी को कभी शरीक नहीं ठहराया, लअतैतुका बिकुराबिहा मग़फिरा, उतनी ही जमीन के रेत के जर्रों के बराबर मैं तुझे मग़फिरत अता करूं, तेरी मग़फिरत कर दूं। सुभान अल्लाह, जो शिर्क नहीं करते सिर्फ अल्लाह ताला से मांगते हैं, अल्लाह ताला उनको देता है। और जब अल्लाह ताला किसी को देता है तो बेहिसाब देता है। उसको दुनिया में 5000 तो मिले, लेकिन आखिरत में उसे क्या मिला वो तो वही जानता है जो देने वाला है, जो बेहिसाब देता है। वल्लाहु अलम। आयत करीमा में जो आयत को मैंने बयान किया था शुरू में, वह इधा सालक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, ए मेरे प्यारे पैगंबर हसन, अगर मेरे बंदे, मेरे अब्द, मेरे बंदे आपसे सवाल करें मेरे बारे में, मैं कहां हूं? फइन्नी करीब, मैं करीब हूं। उजीबु दावत दाए इदा दान, जब कोई मुझे पुकारता है मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं, बशर्ते कि इदा दान, इदा शर्त यह है, यह शर्त है, जब मुझे पुकारता है मैं उसकी सुनता हूं, दुआ भी कबूल करता हूं। फलयस्तजीबूली, बस उनको चाहिए, उन पर फर्ज है कि वो मुझे पुकारे। वलयुमिनु बी, मुझ पर ईमान भी लेके आए, लअल्लहुम यरशुदून, हो सकता है वो रुश्द के रास्ते पे चलें और हिदायत पा लें। और जब कोई शख्स अल्लाह ताला को पुकारता है तो अल्लाह ताला उसकी उस दुआ को कबूल करता है, चाहे वो समंदर की तारीकियों में क्यों ना हो। ज़ुन्नून, यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी, लेकिन दुआ कौन सी थी? जरा अल्फाजों पर गौर करें, ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। इसमें कोई तलब है, कुछ मांगा है? ये दुआ उल इबादा है,